0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: ব্যাংকিং খাইমত বিলে চোদে এটিএম মোবাইল দে ইন্টারনেট ব্যাংকিং এ গোপে বিবরণ আরি খাই বিলে তুই মাধ্যম ক্যারে নিয় দেপ্রে সালি জানকারি রি বিষয়া নিয় কল পরিমো সময় নিয় ঠকদিল খামো ব্যাংকর বে কর্মচারী বীরা নিয় দেপ্রে বিবরণ রি বিষয়া ব্যাংক দে নীল পরিমো নিয় তানে সতর্ক তানা ঠজরিকা বচেনা সিদ্ধার্থ ব্যাংকর ক্যালে জনহিতারি জারি সন্দেশ
1: সিদ্ধার্থ ব্যাংক সম্বন্ধ সদৈ ভরি লাই
2: तिम्रो जन्मदिनको अवसरमा यो औठी उपहार तिमीलाई।
3: वाउ, कस्तो राम्रो डिजाइनको अनि कति चम्किलो, कहाँ बनाएको नि डार्लिङ?
2: अब तिम्रो लागि दिने उपहार पनि अन्त बनाएर भयो त, उही हाम्रो चिर परिचित जय बुद्ध ज्वेलरीमा बनाएको नि।
3: मलाई त एकदमै मन पर्यो।
2: तिमी हेर्दै मात्र जाऊ न, अझ हाम्रो विवाहमा त सुनको हार, मंगलसूत्र, सिक्री, टप, जन्तर, चन्द्रमा, छड्की तिलहरी, चुरी, बिन्दिया, चाँदीको पाउजु अनि सबै गरगहना जय बुद्ध ज्वेलरीमा नै बनाएर ल्याउँछु नि।
4: कम्प्युटर तौलमा छापावाला सुनबाट बनेका आधुनिक डिजाइनका रेडिमेड तथा अर्डर अनुसारका गरगहना, राशि अनुसारका पत्थर, चाँदीका सामानका साथै पुराना गरगहना साटफेट तथा सुनसादी खरिद बिक्रीका लागि
2: जय बुद्ध ज्वेलरी बेसी सहर लमजुङ एलजी डिलर सँगै प्रोप्राइटर मणिलाल विश्वकर्मा फोन नम्बर 066-5245-5245-75 विश्वास तपाईँको सेवा हाम्रो।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: ढिलो भइसकेर जाम सबैजना गाडीमा चढिसकेन।
1: नाइ म त नजाने सिमरन याद छैन।
0: ओ सिमरन आयो
2: ल म आइपुगे जा।

0: जीवन प्रेम विश्वास र सम्बन्ध जी महत्वपूर्ण थोकी लम्मै सम्बन्ध न क्रमरी युवा खुशी आत्मीयते र सम्झनामै जीवन दे छ्याव बनेवा लम्मै तिनी भए कार्यक्रम भए अनुभव जी प्रेम दे र सम्बन्ध न वास्तविक पक्ष दे मुइसुम विषया सुधी सम्बन्ध नै विश्वास समझदारी दे र सम्मान लिय महत्वपूर्ण मुभा उही म तायो सम्बन्धमै सधैं मै पारे आत्मै सम्बन्धरी सुख पैछा दुख पैछा चुनौती इना परिस्थिति लिएर सकारात्मक रूप भिनी उइसो खम्मै चढे खैले वास्तविक जीवन रे सफल लैयाबा नुइन योमै अन्तिमरी थुमै केमै सुइनौ रे बिनी थैली नोइ थिबा कथामै मूल विषया यिन रेडियो मर्सेङ्गीना जीमेल आईडी मर्सेङ्गी रेडियो @gmail.com दे फेसबुक मेसेन्जर रे केमेजी फ्रीमा रे पेमेल खाम कार्यक्रम सैन बताइन श्रृंखला तीन बेला की छो छो हरेक बुधवार 9:08 बजे केमैना महाजरी सैन बताइजी खेमला मो केमैना भावना दे स्वर पीवाला मो तलिबिशा तायो भावना जी नियन्यू बा अधिकार मो अंतिमरी सैन बताइए मरी जीवा तायो थुमरे हार्दिक धन्यवाद पीमरी फेरी अर्को श्रृंखला रे अर्को थुइन सैन बता पैमरी खबर पाचते बालो छो कार्यक्रम रे मध्य बालो प्रविधिता सा प्राविधिक छो दिलो दे धन्यवाद भीमरी कार्यक्रम संचालिका खुशमाया तमुश्वे बिनी विदा किमो रेडियो मर्सेङ्गी 95 MHz ये दिन दलत ओ छाजलो ग्यासजे ओर्छे
1: सेर्बेता सब्दरी थेरीचु सेनोर्बेता खुशमाया दिबालो।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी